राग गौड़ी बैरागण विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हैं। इस दी जाति औड़व वादी ऋषभ संवादी धैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

मेरा हुक्म मन्नेगा। ओ मेरा गुरु मैं उसका चेला, जे मेरा हुक्म नहीं मन्नेगा तो कदी सुपने विच भी ए इच्छा ना रखे कि मेरे घर विच कदी सुख आवे। पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी फरमान करते हैं, जे मेरा कहना नहीं मनना ते यकीन रख गुरसिख, कदी तेरे घर विच सुख नहीं आ सकता, सुख की इच्छा ना रखी। पातशाह आखदे हैं

प्रथम रेत ये जान खंडे की पाहुल छके। सब तो पहला हुक्म है अमृत पान करना, दूजियां गल्लां बाद में। साहिब गुरु गोविंद सिंह साहिब जी फरमांदे हैं, प्रथम रेत ये जान खंडे की पागुल चके, सोई सिंह प्रधान अवर न पाहुल जो ले। पांच सिंह अमृत जो देवे,

अगम निगम उदरण जला जमया गुरु अमरदास हे थपयो परगामी तारण तारण आगे अंतक बजे।

खीर पा रहे हो खाणगे तनिया इंजनी आखी दा तैनू की पता तू तक सिर्फ जिम्मेदार है तैनू की पता के पत्थर नहीं हन होर की हन पंडित जी मेहनत पत्थर ही जाप देने नहीं तनिया पत्थर नहीं हने ठाकर हन पंडित जी ठाकर की होंदा है तनिया मैं तेन कि मैं समझावा ए पत्थर नहीं जे तेन आखिया है जे तेरा मन ही मन गया है पत्थर नहीं कि ठाकर हन फिर तू आखदे ठाकर की होंदा है ना पंडित जी फिर मैं दस के देवो ठाकर की होंदा है तनिया ठाकर वो है जिस दे आसरे ते सारा संसार है। अच्छा जी फिर ठाकर की करता है तन्ना सवाल ते सवाल करे ठाकर को जो कुछ मंगी मैं जो कुछ मंगिए देंदा है फिर तन्या सारा संसार ठाकर दे कोलों चोलियां फैला के खैरातां मंगदा है।

खेत वालों जा रहा सी, जाके ठाकर खूह चल रहा सी, थले रख दिता। आखे ठाकर जी ए तरदो चंदा कर रही, इथे पानी दी थोड़ है, ए जट्टा खूह है, सब कुछ इथे ही मिलेगा, ताजिया सब्जियां मिलेगा।

पत्थर दे विचों हाथ बाहर निकलिया। तने ने आखिया इवे तो गल नहीं बननी, खाकर दी पंडित दे सामने साक्षात बैठ के रोटी खा में ते जगदू कल हाथ हाथ बखालता है, इवे तो गल नहीं बननी। हुण भगवान साक्षात रूप में आके बैठ गए, प्रसाद छकिया। दूसरे दिन का दोपहर चढ़ चुका है, भगवान तैं मैनू बहुत भुखा मारिया है, देख आपा ने हुण कुछ नहीं करना, और देख ला हल चलता पिया खूह, नक्के तैं मोने ने गाइया तैं चारनिया ने, जट सौन लगा खूह थले तू तंत छावे। हुण तन्ना देखता है ठाकर बोलदा हक रहा है, क्यारे मोड़न जा रहा है, गाइया नू मोड़ के लिया रहा है। इतनी देर नू तलोचन भी आ गया, सुना भी तनिया की हाल है, ठीक है पंडित जी तुहाडी कृपा, ठाकर दा की हाल है? पंडित जी जदों दा तुसीं मैनूं ठाकर दित्ता है मेरे घर च लिया रहा बारह हो गई हन। पंडित आश्चर्य हो गया कि जट भोला है सचमुच दे ठाकर दे मैं अपने कोल लिता के रखे ने, मैं तो इसनूं झूठी मूठी दा ठाकर दित्ता सी, जट है ना पता नहीं ठाकर की हुंदा। पंडित जी तुहाडी बड़ी कृपा, धन्ने ने उठ के नमस्कार कीती। पंडित जी वेखो ओ ठाकर गाइया मोड़न गया है, हुण वेखो दूजे कैरे नूं पानी छड़ दिता है। पंडित आखदा है जेठ हाड़ दा महीना है, जट बौंदल गया है तुपां दे नाल। पंडित जी वेखो भगवान तुहाडे नजदीक दी गुजर गए ने, तुहानूं पछाणदे नहीं। तन्ने ने आखिया पंडित सोची पै गया है, तन्या कित्थे है तेरा भगवान, वेखो तुहाडे कोल।

0: दास जयत है।
1: शब रोज
0: गश्तम तरहवा कर देव बनी खया
1: गाहे नजर की कर करदम
0: बदबख्त हम चो बखील गाफिल बदबख्त।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नरक ही न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ये शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसरत तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ये भी आख्या है

नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा? नंबर वन, देही नू सोध, देही नू काढ़, इस नू डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करती, तो बाबा फरीद जी नू पुछया, महाराज आप जी ने की कीता? क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, फिर इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहिंदे ने इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

ऐ मां मेरा मन मेरे वस नहीं। साढ़े जेड़े ख्याल हैं वो बड़ी शक्ति रखते हैं, ख्यालों का एक ट्रैफिक है, समझ लो असी उस ट्रैफिक के दरमियान च खड़े हैं, वो ट्रैफिक सानू हिट करता है, कोई ख्याल किधर नू लै जाता है, कोई किधर नू लै जाता है, कोई किधर नू लै जाता है, हरेक ख्याल का अपना इन्फ्लुएंस है। कोई ख्याल सानू डिप्रेस कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू एंग्जाइटी दे दिंदा है, कोई ख्याल सानू सैड कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू वरीड कर दिंदा है, सब ख्याल ही ख्याल हैं। मन जड़ा है वो टिकाऊ च नहीं है, स्टिलनेस दे विच नहीं है। बहुत ध्यान दे नाल सुनना कि मन दे नाल फिर की कीता जाए, इसनू टुकान दी की विधि है, केड़ा अभ्यास है। आओ आप जिन्हों मैं दो तीन लाइना आज अर्ज करांगा उन्होंने लैके ही प्रैक्टिस करना, ताकि सिंपल सिंपल टेक्निक्स अर्ज कीतियां जान, ताकि उन्होंने आप एक्सरसाइज कर सको। लगातार तीन चार छह महीने तक एक्सरसाइज करन दे नाल यू विल फाइंड ए ग्रेट डिफरेंस इन योर क्वालिटी ऑफ माइंड एंड यू विल अचीव स्टिलनेस ऑफ माइंड। अभ्यास की है बाणी इस तरह के

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ, विटनेस करने वाले अपने आप नू सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ, अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट्स टू कीप आई ऑन योर एवरी।

0: नाटमेर शरीर का कृत कृतवा जुग जुग फेर बटाइया ज्ञानी बुझेता सचुग्रह संतो का धर्म गिरथवाओ त्रित रजत का जोर गिरथवाओ द्वापर तपे का सत गिरथवाओ कलयुग्रत गण का कूड़ गिरथवाओ महला पहला
1: शाम कैसे तंबर स्वामी सच में अच्छे

जुज में डोर छली चंद्रावल काम किस्म जादम भया पार जात को पीला आया वृंदावन में रंकिया कल मैं वेदर थरपण हुआ ना खुदा ये लभया नील बस ले कपड़े पे।

0: जे दूजे पासों मंगी है, जे दूजे पासों मंगी है ता दाज मराई है, मोह दूजी नाही ठान,
1: उतनू जोड़ जाइए प्रभु।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी दी अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असा निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखा दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना दी प्राप्ति हुंदी है। इथों जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिमें होर वध्या होया हुंदा है। इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सादर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तों फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावें कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है। हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रा दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदियां होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तो अनादि काल तो सारे मंगदे आए ने ते दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने। पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सर्रार, काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सर्रार भी फारसी दा लफ्ज है। काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला, प्रगटाण वाला, इसम फाइल। ते सर्रार सिर वाहद सर्रार जमा सिंगुलर प्लूरल एक बचन बहु बचन। सर्रार मीन्स बहुते भेद। जीवन दे अनेका ही पेता नूं सरलता विच कर देने वाला कौन है? काशफ सर्रार गुरु गोबिंद सिंह, बाबा नंद लाल जी कहते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर की वड्याई करते हुए, बेअंतता दसते हुए, वड्डे दाते दी हमद करते हुए कहते ने, तू इतना वड्डा है कि रोख रूहान की रोजी ना टारे। रोजी ही राज विलोक तराजक, रोख रूहान की रोजी ना टारे। जेड़े तेनु मनदे ने, तेरे प्रेमी ने, तेरी होंद दे धारनी ने, तस्लीम करने वाले ने, उना दी ते गल छड़ दे। तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने, उना दी ता गल की करनी? उना वल ता हे प्रभु तेरा ध्यान ख्याल होना ही है, पर तू ते एडा बेअंत है, एडा बेनियाज है। रोजी हिराज विलोक तराज कर, रोख रूहान की रोजी न टारे। रोख मीन्स रुखियां, रूहान जमा है रूह दी। तू ता रुखियां रूहां नू भी ताजगियां देना है, रुखियां रूहां नू भी सुखियां रूहां नू भी पालदा है। जिन्हां विच

जब तक कोई मंगता टीट होके नहीं मंगता, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीट होके नहीं मंगता, टीट कहते ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उथे ही रहना, जब तक कोई टीट होके नहीं मंगता उदो तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नु भी ऐसा एक जगह आख्या, डीठ शब्द अलकाप वर्त्या है, आडीठ धर्म, आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म। वाहेगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता, आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म। जाप साहब कई बारी अरदासा करते जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करण कारण समर्थ कर दई है, आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म। जब तक किसी मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मोदक दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत ढीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते, कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए, आपा समर्पण ना कर देवे, उदों तक कई बारी इनू शक्कां शकूकां दा शुभार दा ही शक होना पैंदा है, शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपने तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नूं छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चा धार लिया मोहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे।

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहे गुरु। अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत।

0: कि लखी ना जाए जाए लखी ना जाए जाए
1: हर बे अंत हो मित कर वरनू क्या जानू होए कैसो रे करूं बेलती